0: वाह क्या बात है। अरे आवाजा तो सुनने मिल दी ने, क्या बात है। नहीं रीसा ओके लैके चलते हैं तुम्हें सरांश होना को। सरांश यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो अपने नाल जुड़ रहे ने गवर्नमेंट को। थोनों पढ़ाई लई यानी कि एजुकेशन दे लोन दवा रहे हैं। तुसी लोन लो तो तुसी एजुकेशन अपनी पूरी करो। वक्रे वक्रे प्रोग्राम ने, बड़े सौखे जे कोर्स ने। सो सरांश और जानकारी देने। सरांश वेलकम।
1: थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी।
0: सो सरांश लोन तुसी दवा रहे हो तो केड़े केड़े प्रोग्राम्स अवेलेबल ने?
1: हाँ जी, लाइक मेनली जो पॉपुलर ने वो है लाइक 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ 4 ਵਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਲੋਨ ਡਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ $170,000 ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਸੇ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਲੋਨ। ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 4 ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 5 ਕਾ, ਤੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਸਾਨ ਸੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੇ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਡਸ ਹੈ ਉਨਕੀ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰੇ।
0: ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਲੋਨ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਓਏ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ लोन के नाम से डर लगता है, बिल्कुल मानता हूँ इस चीज को, बट यहाँ पे इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। यहाँ पे लाइक क्रेडिट चेक के बिना होता है, 0% पे होता है, और जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है तब भी लोन का ब्याज दर सिर्फ 2.5% है।
0: अच्छा, 0% पे होता लोन, कितने चिर लिए 0% पे होता?
1: जब तक कोर्स का ड्यूरेशन है। अगर
0: अच्छा कोर्स के ड्यूरेशन टाइम पे 0%।

0: तो ये नहीं है गाड़ी का लोन लोगे गाड़ी खींच लेंगे, घर का लोन लोगे घर खींच लेंगे, यहाँ पे कि आपके एडुकेशन खींच लेंगे। नहीं जी नहीं, गवर्नमेंट दे रही है, बैंक नहीं दे रहा। कॉल
1: हाँ
0: फोन उठाएं, कॉल करें, अभी एस्टिमेट लें।
1: वेरी गुड, नंबर है सराज दा 437-264-3175, 437-264-3175। ते सराज थोड़ी किन्नी फीस है, कदों लेने फीस?
0: अच्छा, काम और तो बाद $199, नो हिडन फीस, नो चलाकी, नो मीठी बातें। क्लाइंट्स अपनी ईमानदारी से अपनी फीस देते हैं। आज अराउंड 7 बंदों की मुझे फीस आई है, तो मतलब आज 7 बंदों की फंडिंग उनके खाते में गिर चुकी है, और इसलिए आप पीछे ना रहें, अभी कॉल करें, एस्टिमेट लें। नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, 50,000 से लेके 1,70,000 का लोन 0% पे, जो कि बहुत टाइम बाद मोड़ना स्टार्ट करना है। अगर आप अभी इनरोल करेंगे तो बेनिफिट ये है कि हर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो हर 2 साल में एडुकेशन की चेंज होती है। आज आपको लोन आ रहा है 50,000 से 1,70,000 का 2 साल के अंदर। अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो शायद रूल्स चेंज जाएंगे 1 अगस्त 2028 के बाद। तो अभी एनरोल करें, फंडिंग हासिल करें, कॉल अभी करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए, प्रॉपर ऑफिस है, टिम होटल में नहीं मिलते हम, प्रॉपर ऑफिस है, 437-264-3175, 437-264-3175। हुणे कॉल करो 437-264-3175।
1: वेरी गुड, 437-264-3175, 437-264-3175 सराशों का नंबर है। वीकेंड ते मिलो, होर जानकारी लो, इन परसन मिलो, तुहानू चाह चू पिलाउणगे वधिया। 437-264-3175, 437-264-3175। सराश थैंक यू,
0: थैंक यू जी टाइम के लिए,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो वेरी गुड, सराश होने थोड़े लिए अवेलेबल ने। ते एक मैं फिर तो थोड़ा जानकारी दे देवां, जे सिर कर्जा बहुत ज्यादा है, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई लाइन ऑफ क्रेडिट पे ऑफ नहीं हो रहे बड़े लंबे समय तो, रेखा ते नदीम जीटीए क्रेडिट तो बड़े लंबे समय तो कर्जा माफ करवा रहे हैं। 416-650-1100, 416-650-1100 जीटीए क्रेडिट। सुखपा जी भी साढ़े नाल ने, लाइव ऑन लोकेशन, पंजाबी लहरा एट ग्रैंड होम फर्नीचर। जी भाजी
2: बहुत शुक्रिया, धन्नवाद नवी भाई जी। बिल्कुल पंजाबी लहरा दा लाइव लोकेशन प्रोग्राम चल रहा, ते साडे कोल वीकेंड उपर जिन्ने भी परिवार पहुंच रहे ने, फ्राइडे सैटरडे संडे, तुसी दूर दरेडे आना चाहुंदे हो, तुसी न्यू अराइवल कलेक्शन अपने घर लैके जाना चाहुंदे हो, डिलीवरी जित तक भी तुसी कहोगे जिहड़ा तुहानूं असीं प्रोवाइड कीती जाऊगी डिलीवरी, लंडन तक भी असीं तुहानूं डिलीवर करके देवांगे, स्कारबरो तक तुहानूं डिलीवर करके देवांगे, इधरों पिकरिंग तक, ओशवा तक, बैरी वाली साइड तक भी तुहानूं जिहड़ी डिलीवरी प्रोवाइड कीती जाऊगी इस वीकेंड उपर। सो परिवार बेडरूम सेट लेना चाहते हो, डायनिंग टेबल, सोफा सेट, ते बहुत बड़ी कलेक्शन जी डिस्प्ले दे उपर लगी हुई है, सानू वैरायटी बहुत मिलूगी। 6085 टॉमगन रोड दे उपर, 6685 टॉमगन रोड नू याद रखना, ते नाल दी नाल हार्ड फॉर्म मैट्रस दी डील दिंदे आ। जिन्हां परिवारां ने क्वीन साइज दा हार्ड फॉर्म वाला मैट्रस लेना, सख्त फॉर्म, कैडी फॉर्म, हार्ड फॉर्म आपां जिहनू कहिंदे आ, जिहदी रेगुलर कीमत $600-700 सी, इस वीकेंड दे उपर जिन्ने भी परिवार साडे कोल पहुंचणगे, क्वीन साइज दा हार्ड फॉर्म वाला मैट्रस सिर्फ 199 ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਡ ਫੋਮ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਸਿਰਫ $199 ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਟੋਸਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, 6085 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, 6685 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ, ਡੈਰੀ ਟੋਮਗਨ ਦੀ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਹਾਈਵੇ 410 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, 6085 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ, 6685 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ ਨਵੀ ਭਾਜੀ।
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, 6085 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ, ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀ ਡੋਟ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਆਈਲੈਂਡ, ਵਾਰਡਸ ਆਈਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੈਨਲਿਨਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਟੀ ਡੋਟ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ। ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨ ਅਪਸ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀ ਡੋਟ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ। ਟੀ ਡੋਟ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਡੋਕ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ 1 ਕੁਈਨਜ਼ ਕੀ ਈਸਟ ਤੇ, ਯੰਗ ਅਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਕੀ ਈਸਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਨਰ ਤੇ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ ਤੇ। ਟੀ ਡੋਟ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ, 6473708368। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੌਕ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੀ ਡੌਟ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਟੀ ਡੌਟ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ, ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸੈਂਟਰ ਆਈਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਨਵੀਂ ਯਾਰ
3: ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ,
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਮੈਸੇਜਸ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ

0: ये नहीं, आर नेत यार, ऐसा गबरू, ऐसी आवाज, ऐसी वोकल, जानदार, दमदार, कमाल दा आर्टिस्ट आ। तो खुशखबरी तुहानू दईए कि आपां इनू लैके आ रहे हैं अरनीत नू तुहाडे वास्ते टोरंटो शहर दे विच बहुत जल्दी अक्टूबर दे विच। फिर नचांगे, भंगड़े पावांगे। तो यार क्या बाई दे हिट हिट सोंग है।
1: हाँ जी हाँ जी, मैं भी बहुत सुनता अरनीत नू,
0: सारे सुनते, मैं भी सुनता।
1: मेरा बहुत फेवरेट है उन्हां दा एनकाला गाना।
0: आहा, एनकाला सुनिए फिर भी।
1: हाँ, सुन दे जी।

0: क्या बात है। सो भाई आरनेत अक्टूबर दे विच ट्रंटो आ रहा ते बस तैयार हो जाओ, फिर पावांगे भंगड़े। फिर आरनेत तुहानूं पता ही आ, इक ते जो नाल गाउण वाला गायक आ, इह फिर सीढ़ियां सूढ़ियां ला के नहीं, इह तां कहिंदा कि बंद कर दो टोलकियां टलकियां चक दूं मैं फटे। तो 905-673-3337 घट आ इसे गायक ते। ओ माफ़ करना थोड़ी कॉल डिसकनैक्ट हो गई, सोहणे दोबारा कॉल कर लिओ। हरबंस धालीवाल जी सत श्रीकाल, तुसीं आउणे रहो जी। जी सत श्रीकाल जी, तुसीं आउणे रहो जी। जफर मलिक जी, तुसी रेडियो डान दा रेफरेंस दे दो, तुहानू एक बोतल फ्री मिलूगी दोवां दे नाल।
1: ठीक है, थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। 905-673-3337 905-673-3337 पंधेर साहब सत श्रीकाल जी, आयां नू की हाल चाल? चढ़दी कला जी, चढ़दी कला बादशाह, किवें हो? ठीक हो?
2: बस कृपा जी, कृपा बहुत वधिया प्रोग्राम चल रहा जी।
0: थैंक यू सो मच
2: भाई, पूरा वीकेंड दा
0: क्या बात है, वीकेंड दी मुबारकां भाई सारयां नू। पंधेर साहब तुसी रौनक ला रहे हो किते वीकेंड ते?
2: थोड़ी
0: जान देंगे हुण दो किते, एक थोड़ा जिहा राग अलाप तां सुना के जाओ ना।
2: राग अलापी ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਈ ਅੰਦਰ ਸਤਾਈ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ।
0: ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਪ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਪ ਜਿਹਾ ਨੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਜੀ ਲਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਕੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਲ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ।
2: ਚੱਲ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ, ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ।
0: ਹਾਂ
2: ਪਹਿਲੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਜਮਾਲ ਮਾਏ

0: रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लेस्टेशन 5 डायसन एयर रैप निंटेंडो स्विच रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस
1: राजधानी के किसी भी लोकेशन पर विजिट करें परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें
0: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट

0: यार क्या बात है। देखो याद तो आ ही जाती है, गल सही है। वैसे ना जदों प्यार हुंदा किसी नूं ते प्यार ऐसा हुंदा कई बारी कि बस बंदा याद ही करदा रहिंदा 24 घंटे 7 दिन। बंदा उठदा ते पहला ख्याल उस इंसान बारे आउंदा, ते बंदा चाह पींदा तां वी बंदे नूं ख्याल उस इंसान बारे आउंदा। बंदा ड्राइव करदा ते बंदा कहिंदा यार कि खब्बी सीट ते नाल बैठी होवे तां इहदे वर्गी कोई रीस ही नहीं। याद तां देखो प्यार करन वाले कर ही लैंदे ने। सो प्रोग्राम मैं पंजाबी लैणा ते अज दीआं गल्लां बातां वी कुझ तुहाडे नाल करदे आं शुरू। असीं ना अज सवेरे एक डिस्कशन कर रहे सी सवेर वाले प्रोग्राम दे विच कि मैं एक सिचुएशन शेयर किया, सुनियो ध्यान नाल ते तुसीं अपनी फिर कॉलां करियो। एक कुड़ी आ ते उस कुड़ी ने उहदा हुण किसे नाल एक बंदे नाल रिश्ता चल रहा। उहने ना अपने माँ बाप नूं दस्सिया, कहिंदी कि मॉम डैड देखो मेरा बॉयफ्रेंड है। ते उह कुड़ी पंजाबी आ ते कहिंदी कि उह गोरा, ते असीं ब्याह करवाउण बारे सोचिया ते इह साडी डिसीजन है जो वी है। चलो गल्लबात हो गई उहनां दी ते उहनूं कहिंदी, ते उह कुड़ी कहिंदी माँ बाप नूं वी चलो मेरा फाइनल डिसीजन है। चलो बच्चे हुण देखो अक्सर उहनां ने ब्याह करवाउणा, उहनां दी आपदी चॉइस है, जिहदे नाल मर्जी करवाउण। पेरेंट्स ने पहला ना नुक्कर बड़ी कीती कि नहीं बई भी तू ब्याह करवाउणा तां तू अपने मुंडे नाल करा, ये वो दिस दैट। चलो गल्लां वधियां, कुड़ी कहिंदी कि नहीं मॉम डैड देखो मेरी ये डिसीजन है। कुड़ी वधिया पढ़ी लिखी है, वधिया कम कुम करदी है। ते उहदे पेरेंट्स कहिंदे चल ठीक है हुण तेरी मर्जी है, तू ऑलरेडी फैसला कर लिया ब्याह करा ला, बट असीं देख आनंद कार्ज करनी, असीं कोई चर्च चुर्च दे विच जाके नहीं तेरा ब्याह करना। ते वो कहिंदे कि दोनों चीजा होणगीयां, देखो मुंडे वाले भी चाहणगे कि असीं भी अपनियां जो यू नो रस्मां ने ओह करिए। वो पेरेंट्स कहिंदे सॉरी भी असीं तां उत्थे आउणा नहीं गा, जे तू करना ब्याह सिर्फ आनंद कार्ज कर ते दैट्स इट। वो मान नहीं रहे भी चर्च दे विच भी कुड़ी फंक्शन करे। हुण थोड़ा की ख्याल है कि पेरेंट्स कितना ना कितने अपने थां ते सही ने जे उहनां दी ये मर्जी है। हुण सवेरे असीं गल कर रहे सी, कुछ लोग कहिंदे नवी यार गलत गल है, कोई कहिंदा क्यों पेरेंट्स दी खुशी नहीं देखनी, जे उह नहीं चाहुंदे कि असीं चर्चां चुर्चां जाणा तां फिर उह अपने थां ते सही ने। थोड़ा हुण की ख्याल है, थोड़ी दियां अज बहुत सारियां कॉलर रह गईआं ते नंबर है अपना 905-673-3337, 9056733337 अपना नंबर है, 9056733337। थोड़ा की ओपिनियन है इस बारे देखते हैं ते थोड़ी कुछ कॉल्स लेने हैं जरूर। मिक्सड मिक्सड काफी रिव्यूज मिले मैनू सवेरे, जे सच पुछो कोई कहिंदा सीगा फिर की हो गया, कोई कहिंदा नहीं यार नवी गल गलत है। सो 9056733337 नंबर है अपना। एक तुसी PNJ रेनोवेशन नू याद रखो, जे घर दी कोई भी A to Z रेनोवेशन दा काम है, लीगल बेसमेंट तैयार करवानी है, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰੇਮਿੰਗ ਡਰਾਈਵਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਫਲੋਰ ਪਵਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ PNJ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੋਲਿਡ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟਕਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਆ। 437-318-0400, 437-318-0400 ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। 9597 ਹੈਲੋ
1: ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ?
0: ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ?
0: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਭਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ।
0: ਹਾਂ
1: ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਅਸਫਲ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ?
0: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਇਹ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਰਚ ਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।
0: ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇ ਚਰਚ ਚੁਰਚ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
1: ਹਾਂ ਚਰਚ ਚ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਚਲ ਘਰ ਦੇ ਆਉਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ।
0: ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲਵੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਚ ਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੈਸ਼ਨ ਰੂਫਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੂਫ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਰੂਫ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸ਼ਨ ਰੂਫਿੰਗ ਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਫੁੱਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਰੂਫ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਰਾ ਲਓ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਸਮਰ ਹੈ ਵਿੰਟਰ ਆ ਗਈ ਜੇ ਛੱਤ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੰਗਾ

0: करवाने के लिए आपको ऑप्टिक वर्ल्ड डॉट सी ए में चाहिए, आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5000 पर कॉल कीजिए 9054567733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: Since I last seen you, it's 9 days over here now.
2: We didn't have good news here. When COVID happened, disaster. Everyone had a rock.
3: You can now make pizza in your backyard that you couldn't get.
4: लो जी कुमारी फिर अपने टेस्ट की गल कर लगे हैं, दिल कर रहे हैं ताजी का सिफ्ट कर लगे हैं, जरा सुन के सुन।

तब पानी सब सुबह किया गाव सुन हो पर होने पाई गुरपुरा पूरा किया रहा साचा साहेब अमित बनाई भगत बचल दयाला संता की पैर रख आया आद बिरद व्रत पाला हर अमृत नाम भोजन नित पहुंचो सर्व बेला मुख पाव चरा मरा ताप सपना का गुण गोविंद नित गावा

राधा ने पूरन काल तमारे हर जियो तू सुख संपत राख ले हो पाई मेरे को प्रभ आ गए अंदर जो मांगो सोई सोई पाओ अपने खसम भरोसा।

छाया व्यापी सब संसार उबारिया पाद हम रब कृपा धारी अपना बिरद समारिया कोई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद पुर गावो मन तन देह सुखाली रहाओ पद ते उदाहरण सतगुरु मेरा मोह किसका परभाषा बख्श ले सब सच्चे साहिब सुन नानक की अरदासा सुन पाला पंजवा बख्शिया पार धर्म परमेश्वर सगले दोपिदारे गुर पूरे की सरणी उभरे कागज सगल सवारे हर जिन सिमरिया नाम आधारे ताप उतारिया सब गुरपुरे अपनी कृपा धारे रहाओ सदा आनंद करो मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया बड़ी बड़ियाई नानक करते की साज सबद सत पाखिया।

संसार अपने जी जंत आपे राखे जमहे की ओ हटतार हर के चरण हृदय और तार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहा तिसकी सनी उबरे भाई जिन रचिया सब कोए करण कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याई है भाई मन तन शीतल होए और पल्ला पंजवा संत हो हर हर नाम त्याई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियड़ा फल पाई रहा सतगुर पूरा नाम गवाया अपनी कृपा।

0: कार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाए और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ, इंडिया सजावट एंड पूजा हट से। और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा, ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
1: सूर्य कवच स्तोत्र।
2: अस्य श्री आदित्यवच स्तोत्र महामंत्रस्य स्तवान ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः देवता घृतं सूर्यं शक्तिः आदित्यं कीलं महादित्यप्रसाद सिद्ध्यते स्तोत्र मंत्रं जपे विनियोगः गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वा

श्रोताओं का दर्शनसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, या अली मदद। अब आपके लिए का त्योहार आने वाला है, अगस्त 27 को पूर्णिमा है। तो सब पहले तो अपना इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है अगस्त 15। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दिल्ली में आज तो शनिवार का दिन था, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने सेलिब्रेशन किया। और आपके लिए, आपको सभी को हमारे इस इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई सभी को। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, बढ़िया आपको बैक यार्ड में बाजू की चाहिए, किचन में गैजेट्स बढ़िया सी चाहिए, तो आपको जाना होगा, जी हाँ आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इस मॉडल पर रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। तो आप सभी को हमारे जितने स्पॉन्सर हैं इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो उनका जो दूसरी लोकेशन गोल्फ में, आप उनके स्पेशल राखी स्पेशल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-7000045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिएगा। अपनी बहन को अगर बढ़िया सा गिफ्ट लेके देना चाहते हो राखी के लिए, तो आप अभी से ऑर्डर अपने बुक कर लीजिए। और अब अगर आपने मूव होना है, तो मूविंग के लिए HK मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। और उनका आप नंबर लिख लीजिए, 416-524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर लीजिए और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं HK मूवर्स। और आपने अगर आप लंदन में रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कोलिजन डिपो अब आपके लिए गो रोड पर मौजूद है। आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो आप masterpollutiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हैं। अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवाना है, तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए 1715 मिसिसागा में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप उनको 905-625-0050 पर कॉल कर सकते हो। 905-625-0055 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर वालों को।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असीं लैके आए हां कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल G26 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशन तो सर्व करदे ने।

0: into isolated segments. To the people of India, whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India, where all her children may be.
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका अब यही स्पीच जो है बहुत सालों से मैं ये करना चाह रही थी, पर आज मैं करूँगी, क्योंकि ये जो स्पीच है जवाहरलाल नेहरू की, मैं इसको पढ़ूंगी। Victorious with destiny, Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru's inaugural address, August 14, 1947. Long years ago we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance, it is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. At the dawn of the history, India started on her unending quest and trackless centuries are filled with her striving and grandeur of her success and failure. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of the quest, forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of misfortune and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of the freedom, we have endured all the pains of labor and our hearts are heavy with the memory of this soul. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons us now. The future is not one of ease or respite, but of incessant striving, so that we may fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and poverty and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest men of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world, for all the nations and peoples are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. Peace is said to be indivisible. So is freedom. So is prosperity now. And also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated fragments. To the people of India, whose representatives we are, we make an appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India, where all her children may dwell. The appointed day has come, the day appointed by destiny, and India stands forth again. After long slumber and struggle, awake, vital, free, and independent, the past clings on to us, still in some measures, and we have to do much before we redeem the pledge we have so often taken. So, end of the speech. So, today I am able to read it. I hope you like it. तो आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं. तो अब आपको, अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स. आप किसी के लिए भी गिफ्ट खरीदना चाहते हो बढ़िया सा किचन गैजेट्स का, या फिर आपने कोई बैकयार्ड के लिए अपने बारबेक्यूज खरीदने हैं, सोफ़ाज खरीदने हैं, तो ये आपको सारा सामान बहुत बढ़िया कीमत पे टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है. टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है ब्रैम्पटन में. दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्थ में है. टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो. और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए. 905-799-0045 पे टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कर सकते हो. और अब अगर आपने मूव होना है तो एच के मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने के लिए मदद करते हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं. तो और जानकारी के लिए आप 416-524-704 पर कॉल कीजिए. 416-524-6704 एच के मूवर्स. न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया में मौजूद है. आपने किसी तरह का भी लाइव कुकिंग करवानी है तो आप उनको कॉल कीजिएगा. 905-814-1703 पे आप उनको कॉल कर सकते हो. और अब अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हो, आपको कोलिशन का काम करवाना है, तो आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कोलिशन डिपू अब आपके लिए गोर रोड पे लंदन में मौजूद है. आपने किसी तरह की भी आपने कोलिशन का काम करवाना है, आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसे बना देना है, आप मास्टर कोलिशन डिपू डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो. तो अब आपके लिए बड़ा देशभक्ति वाला गीत सुनाएंगे. तो उम्मीद रखूंगी कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा. तो लेट्स, ये जो गाना है मेरे ख्याल आपको, पर हमारा प्रोग्राम सबसे पहले आता है ना सुबह में, तो आपके लिए ये जो गाना है, ये आपने बढ़िया बढ़िया गाने जो है जादू वाले, वो आपको मैं हमारे प्रोग्राम से ही सुना देती हूँ फिर पूरा दिन. और कोई लोग वक्त के बाद में उनके वो आते हैं, तो सबसे पहले हमें मौका मिलता है आपको सुनाने का. सुलेक्ट लेडीज फॉर एवर ग्रीन सॉन्ग.

ऊंची यहाँ भोली चकले शीरों की यहाँ गाते हैं रांझे यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में मस्ती है धूम में मस्ती में।

0: सारे फूलों की राहों में सारे फूलों की सावन यहाँ सावन बालों में खिलती है कलियां सालों में।
1: ये जो गाना है वैजयंती माला नया दौर फिल्म की उसके ऊपर फिल्माया गया था, ब्लैक एंड व्हाइट थी, रफी साहब ने कमाल कर दी, फॉर एवर ग्रीन सॉन्ग है ये। तो आइए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो एक और बहुत ही बढ़िया से गाना है, लेट्स गो टू
2: भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत दिखलाई भारत तो यूं चांद जाना मिलता धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई पहले जन्मी है जब कला अपना भारत वो भारत है नीचे संसार चला संसार चला और बढ़ा जो आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान करे ये और बढ़े फूले बसंती देवंत

बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अब आपके लिए

है तो एक बार फिर से आपका स्वागत है कतलार में। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और हम प्रे करते हैं कि हमारे भारत की लोग और हमारा भारत दुनिया में आगे आगे जरूर बढ़े और आसमान को छूने वाली यात्रा किया करे। हमारे देश के जो ऐसा होता है कि हम जब कहते हैं कि हमारा भारत हमारा वही है जो भारत के लोग हैं। अब भारत के लोग जो हैं दुनिया भर में सभी जगह पे अपना नाम कितना बड़ा रोशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स कर रहे हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत ही हाईली बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, हम उनको सलाम करते हैं, वही है हमारा भारत समझ लीजिए। तो इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। रात को भी हम 10 से 11 बजे आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे और इसी तरह इंडिपेंडेंस डे को मनाते रहेंगे। और मेरे वतन के लोग अगर ये गाना लता जी का नाम प्ले करेंगे तो इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन अभी भी रहती है। तो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी का पला। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

रहमत तेरी, नाम तेरा, कुछ नहीं जो मेरा, श्वास भी तेरे, एहसास भी तेरा, एक तो ही सतगुरु मेरा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडे सारयां दा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही अपने प्यारे जहे शो रेडियो आवाज़ च।

0: अच्छा सो मैं स्ट्रांग हुआ, मैंने अपने शो में इतनी मेहनत डाल दी ना कि बस कृपा होगी। कृपा किसको बोलते हैं? उसकी दया, दयाल पुरख मेहरबाना, दयाल पुरख मेहरबान हो गया ते मेरी मेहनत देख के मिलेगा मुकद्दर, चलेगा
1: सिकंदर।
0: वो गल मेरे ते हावी होगी भी, हाँ मुकद्दर मिलूगा जे सिकंदर तुरूगा, ता जे सिकंदर खड़ा रहा तब मुकद्दर नहीं मिलना, तेन चलना पैना, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। सो इसी तरह चलते रहे ते आज सिलसिला इतने तक है कि माड़े मोटा जे लोग अपन भी जान लेंदे होरां दे मुकाबले च। ठीक है,
2: ओके जी।
0: 905-673-3333 स्टूडियो से नंबर है। और ब्रिजी
2: जी,
0: आप क्या क्या योगा में करते हैं?
2: जी हमारा सेंटर आयुर्वेदिक योगा सेंटर है, कोई होलिस्टिक हीलिंग, कोई स्ट्रेस टेंशन पेन कोई प्रॉब्लम हमारे साथ सोल्यूशन है।
0: धर्म ते अभ्यास दे तौर दे उते थोड़ी ये दूर कर दे, धर्म और अभ्यास
2: जी।
0: धर्म मतलब की है कि ओम शांति करके चलते ने, अभ्यास है कि थोनू साह लैण दी प्रतिक्रिया तो अपने अंदरले सिस्टम नू किवें कंट्रोल करना बाहर तो वह दसते ने। ओके आगे
2: जी, शिरोधारा अभ्यंगम पोटली थेरेपी ऑल काइंड्स ऑफ आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपीज कर रहे हैं।
0: पंजे तरह दे इन्हां को पंज तरह दियां मालशां ने, अलग अलग ढंगां हुंदियां ने पंज मालशां, उन्हां मालशां दे नाल थोड़ी बॉडी नूं बैलेंस करदे ने, अंदरली बॉडी दी रिपेयर बहुत जरूरी है। नहीं करोगे तां लोकां नूं बीमारियां बहुत हुंदियां, ब्लड प्रेशर बीपी कैंसरां कूंसरां तो लैके सब कुछ अपने हाथ च नहीं, पर आपां उस चीज दे उत्ते काम कर सकते। बाहरली स्किन देखो संतोष जी कितनी चमका के आते हैं, आते हैं कि नहीं बोलो
2: जी।
0: बाहर तो उन्होंने लिखाया हुआ बांह के ऊपर, सब्र संतोष बांह के ऊपर लिखवाया हुआ ना
2: जी,
0: अंदर से ये कैसे हमें नहीं ना पता।
1: और भी अच्छी हो।
0: अच्छा सो हरी गल मैं देते लेना फिर। अच्छा आगे ये पांच तरह की मालशा करते ने जिहड़ियां सिर ते तेल पाके थोड़ी जिहड़ी अंदरली गरमैश दूर कर देंदे सिर दी नूं, गर्मी चढ़ी हुंदी जिहड़ी है ना, हो जाए ओ ना हो जाए, ऐ कर दूं ओ कर दूं, कंट्रोल कर लो आ कर लो, मेरा ऐ करता मेरा उन्हें माड़ा करता, इन्हें माड़ा करता उन्हें माड़ा करता, ब्लेमर्स नहीं होंदे ब्लेमर्स, ये कलंके होंदे ने, इन्हें माड़ा करता तेरे करके मेरा ऐ हो गया उहदे करके, ये कलंक होंदा जिंदगी दा कलंक, जिदे लग जांदा उहनूं भी काला करके रख दिंदा। अगे चलो
2: जी।
0: हाँ
2: जी, आज हमारा एक नेशनल फेस्टिवल
0: है, उससे पहले कौन कौन सा तेल यूज करते हो?
2: सब हमारा आयुर्वेदिक तेल है जी, मुरिवन्ना धन्वंतरम महानारायण तैलम क्षीरबला,
0: ये दर्दा ते सोजशां नूं दूर करने वाले तेल ने, ते ये तेल चमड़ी दे उपर लगते ने, इन्हां नूं रचाउंदे ने अंदर इक इन्हां को हॉट बॉक्स है उहदे विच बिठा के,
2: हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन।
0: हाँ हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन, सो उहदे च बिठा दिंदे ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 647-1369-1369
2: ਜੀ,
0: 647-619-1369-647-1369-1369। ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ
2: ਜੀ,
0: ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ, ਐਸੇ ਬੋਲ ਦੂੰ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ, ਉਸਕੋ ਕਿਆ ਬੋਲਤੇ ਹੈ?
2: ਓਣਮ।
0: ਓਣਮ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਣਮ ਆ,
2: ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਹਮਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾ फेस्टिवल आज महाओणम टोरंटो डाउनटाउन में चल रहा
1: है,
2: बहुत बड़ा प्रोग्राम है।
0: हाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सुखरा 2,000 बंदा उत्थे इकट्ठा हुंदा
2: जी,
0: ते असी नगर कीर्तन दे 2.5-3 लाख इकट्ठे हो जाने सो ये भी हो जा करनगे। हाँ जी, सो नहीं मजाक नहीं, सीरियसली असी 2.5-3 लाख आके भी कोई मकसद थोड़ी रखा हुआ कि असी ब्लड बैंक नूं इन्ना ब्लड दे दांगे, सिख किड्स लिए इन्ने फंड इकट्ठे कर दांगे, असी तां उत्थे भज भज के, जिवें ओह मैनूं मिलिया नहीं सीगा कहिंदा वी स्टाल लाउंदे नगर कीर्तन ते, मैं कहा गादी कहिंदा पीज़ियां दी, मैं कहा वी पीज़ा वर्थ है? कहिंदा लै 8 रुपए दा पीज़ा लईदा, अगले दी गर्दन घुट के कहिंदा बई पीज़ा स्टोर वाले तों
1: जी
0: 8 रुपए दा पीज़ा लईदा, कहिंदा गर्दन घुट के उहदी, मैं कहा गर्दना घुट घुट के लंगर लाइओ लोकां नूं, अकलां सिखियो दुनिया ते आके चल जाइओ, पर गुरु ने की सिखाया उहना सिखियो।
1: बिल्कुल
0: है जी, जी नीयत पहला लंगर लाउन लगे है जी, है उदे खाने वाले भी तो हजे आउणगे फिर
1: या।
0: बोलो जी,
1: बिल्कुल
0: वाहिगुरु। हाँ जी, सो ब्रिजी नंबर कितना?
2: 647-649-1369
0: 647-619-1369 647-619-1369
2: जी
0: 647-619-1369 647-619-1369 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ।
0: ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ 647-6193-13. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ 905-673-33-37 ਹਨ ਔਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ?
1: ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਮਨ ਜੀ।
0: ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਪ੍ਰਣਿਆਨਮ ਪ੍ਰਣਿਆਨਮ ਅਬਰੀ ਜੀ ਚੱਪਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਗਿਆ। 905-673-33-37 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

0: 37 तो सड़ना गल कर रहे हो। अरे बाबा भक्तौरा की लाइन में लाइन खाली है। मैंने एक भाई साहब का फोन आया
1: जी,
0: कहता ब्रिजी चौल हाथा ना खाता
1: जी।
0: ते हाँ जी, परमेश्वर ने हाथ बख्शे ने सानू, ते हत्था नाल जिहड़े खाने खाते ने बंगाली हत्था नाल खाते ने। हाँ जी, ये लोग सारे परमेश्वर च बहुत रचे मिचे हुए ने
1: जी। बिल्कुल,
0: इन्हां लोगों ने हत्था दे नाल किरत करके हत्था नाल खाना हुंदा जी, ये हत्था नाल खाते ने। फिर कहिंदा हा, हा, हा, हा। मैं बड़ा हैरान सी भी ये किहे जिहा दिमाग वाला तुरिया फिरदा। 905-673-3337 स्टूडियो दे नंबर ने, ते तुसी जिहड़ा है कॉल कर रहे हो। हाँ जी हरमेश, हरमेश
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी,
2: कवा किचन ना तोड़ा पासवर्ड
0: है। तोड़ा ना हरमेश शर्मा जी है ना।
2: हाँ जी।
0: ते डेट ऑफ बर्थ?
2: डेट 31 जनवरी 1962।
0: हैं खुश होके दिखाता 1962 कहने गड्डी भज्जी फिरदी अजे भी।
2: हां जी
0: नहीं भज्जी फिरने कहने 1962 तो लेके 2062 तक।
1: बिल्कुल
0: जिंदगी जरूर चलती रहे पर नाल तस्वी भी चलती रहे। तस्वी केड़ी? सहाली। पांच नमाज है जी?
1: जी।
0: पढ़ के जेडे लोग बाहर निकलते सी पांच नमाज नबी दियां पढ़ के है जी। तू का बाण करदा बुल्ले शाह दा इको मणका मौला ही मौला करदा। हर साह बुल्ले शाह दा एक नमाज पढ़ता है
1: जी,
0: के मौला ही मौला करदा शुक्र शुक्र करदा चल रहा है। स्टूडियो नंबर 905-673-3337 किन्नी तारीख दसी इन्होंने?
1: 31 जनवरी।
0: 31 जनवरी, 31 जनवरी है ना। जनवरी 31 दे विच की आ 31 जनवरी है।
1: हाँ जी।
0: अच्छा थोड़ी प्रॉब्लम्स ने कि तुसी किसी दी भी गल सुन के मगर बहुत छेती लग जाने हो। थानू कंट्रोल करने का एक बटन है जे किसी ने समझ आ जाए उतो कंट्रोल कर सकता है। दूसरा हैगा कि तुसी बहुत बार काली की जिंदगी चो प्रॉब्लम्स आई हैं
1: जी।
0: एक तुसी जो थोड़े नाल दे कोई कहिंदे ने किसी गल नूं सुनने की बजाय तुसी थोड़ा जिहा ना अपसेट हो जाने हो। थानू टोकना पसंद नहीं, थानू कोई टोके।
2: हाँ जी हाँ जी।
0: आ तीन चीज़ों पर काम कर लो, बाकी दानी हो पुनी हो हाँ जी, स्मार्ट हो प्रैक्टिकल हो सब कुछ हैगा थोड़े अंदर। 905-673-3337।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तों ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तों वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381
5: लखां दिलां दी धड़कन द सुपरस्टार आमी वेयर
6: मैं किथे बैठे आ करूं
5: Sound Live and Cellular Point present AmiWare live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: चक्कर लगाओ।
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच ते चूहे ओ हाले महीना पहला ने ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरे पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरो बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट हुई करी जांदे आ।
2: ओ मैं ता कहना घर ही बेच दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नू कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नू कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तां नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000।
4: ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੂਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸਿਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰਸ ਦੋ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਹੈ 416-725-2551, 416-725-2551, या फिर 416-457-3381, 416-457-3381। इन्हां दोनों नंबर से तुसीं कॉल, टैक्सट और वट्सएप कर सकते हो, तो तुहानूं इह दुबारा रीच आउट कर लेंगे। जरूर तुसीं गलबात कर सकते हो तजिंदर सिद्धू सर दे नाल, ते नाल सिमराज सिद्धू जी दे नाल। एनी टाइम तुसीं इन्हां नूं मैसेज छड्ड सकते हो, तुहानूं बैक कॉल कर लेंगे, या फिर तुसीं कॉल्स कर सकते हो डायरेक्टली नंबर से 416-725-2551 या फिर 416-457-3381। उम्मीद है तुसी अज दा प्रोग्राम इंजॉय किया होएगा। वीकेंड सारा दा बहुत ही वधिया होवे, सारा दे घर जिन्हां दे विच खुशियां ने, कोई खुशी दा माहौल है, तुसी सारे पूरा इंजॉय करो, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स नूं पूरा टाइम दिओ, अपने आप दे लिए पूरा टाइम कढ़ो। ते फिलहाल मैं इत्थे इजाजत लैनी आ, मेरी मुलाकात तुहाडे नाल हुण मंडे नूं होएगी दोपहर दे 3 बजे, ते उदों तक तुसी हसदे रहो, मुस्कुराउंदे रहो। सुरजीत खान जी दा लास्ट गाना तुहाडे लई छड्ड के जा रही आ, इहनूं वी इंजॉय करो। ते मैं मनप्रीत कौर तूर इजाजत लूंगी, मिलते हैं आप छोटी जी ब्रेक तो बाद मंडे वाले दिन। उदों तक दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए हैं जी वीकेंड तुसी इंजॉय कर रहे हो शनिवार आ गया शनिवार की शाम दी विच तुसी एक बार फिर तो एक प्रोग्राम ट्यून कर चुके हो जिसका नाम है रेडियो अंदाज चलो एम 5:30 ती रेडियो अंदाज से विच मैं थोड़ी होस्ट परम थोड़ा साथ दे रही हूँ मेरे वालों सारे सारे लिसनर्स सारे परिवारों को बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयानू खुशामदीद एंड स्वागतम

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम अर्ज है। आज आपके दिलों पर मोहब्बत भरी दस्तक देकर थोड़ा सा मदहोशी के आलम में ले जाने के लिए शेरो शायरी से लबरेज गजलों का एक मुख्तलिफ सिलसिला लेकर हाजिर हूं, जिसे आपकी मोहब्बत ने नाम दिया है कहकशां। समीन, गम और खुशी, ये जिंदगी के वो दो पहलू हैं जो धूप और छांव के साथ साथ जिंदगी के सफर के साथ हमेशा चलते रहते हैं। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गम से यारो सामना एक बार होना चाहिए, मुश्किलों से भी कभी दो चार होना चाहिए। मानता हूं है जरूरी काफिया वजनो बहर, मानता हूं है जरूरी काफिया वजनो बहर, सोच का भी तो जरा थोड़ा सा विस्तार होना चाहिए। गम से यारो सामना एक बार होना चाहिए।

समय चलते हैं कहकशां के उस दौर में, सुखनवरी के उस पार, जिसे बहुत ही उम्दा आवाज के साथ नवाजा है जगजीत सिंह ने। इस गजल से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे खाली मकान कहिए वो कोई घर नहीं होता, कि जिस घर में मोहब्बत ना हो उसका एहतराम नहीं होता, जो दिल को ठेस पहुंचाए ना हो इंसानियत जिसमें, वो कुछ भी हो मगर यारो कभी शायर नहीं होता। तो शायर उसे कहते हैं जो अपनी कलम की एक बूंद से समंदर लिख देता है। तो आइए कुछ ऐसी ही गजल में आपको डुबोने के लिए एक बहुत ही उम्दा आवाज, जिसे जग को जीतने वाली आवाज कहते हैं, जगजीत सिंह की आवाज़।